0: इसके अलावा 63 ही स्पॉट एफ एम समेत हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में अल तरतीब खबरें और सवार प्रोग्राम तजिया और क्यों के पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हस्बे मामूल एक घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपल
1: और रेमजे कप्तान।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: चीनी सदर शी जिनपिंग ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बंद कमरे में होने मुलाकात में अमरीका ईरान पर जोर दिया है कि वो जंग के खात्मे के लिए मुजाकरात दोबारा शुरू करें। शी ने कहा चीन वाशिंगटन तेहरान की इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त पर वापस आने और अपने इख्तलाफात को बशमोल जौहरी मुहादमे पर जामिया मुहादे तक पहुंचने के लिए मुजाकरात के जरिए हल करने की हमायत करता है। दरअसल शी के लिए दिए गए एक सरकारी इशारे में ट्रंप ने अमरीका और चीन के तल्लुकात में बेहतरी को सराहते हुए कहा दरिना इन इख्तलाफात के बावजूद दोनों मुल्क के दरमियान तल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं रहे। मक्का दिफाई मुहादे के वज़रा ने सऊदी अरब की हमायत के लिए हंगामी इजलास मुनक़िद करने पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्किया के वज़रा खारजा ने मक्का दिफाई मुहादे के तहत सऊदी अरब की हमायत के तरीकों से निपटने के लिए तीनों मुल्क के चीफ ऑफ स्टाफ के हंगामी इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। शहजादा फैसल बिन फरहान साक डार और हक्कान फिदान न्यूयॉर्क में कौमदमे सऊदी मुस्तकिल मिशन में मशावरत के दौरान मुलाकात की तैयारियों का जायजा लिया। मक्का मुहादे के मुताबिक किसी एक फरीक पर हमला तमाम फरीकों पर हमला तसव्वुर किया जाता है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म ने जुमेरात को दीगर आलमी रहनुमाओं से सख्ती से कहा मुल्क में कम अज कम 1400 अफराद के हलाक ताहाल मुतअद्दिद अफराद के लापता होने वाले मोहलक सैलाब ने दुनिया को हकीकत की याद दहानी कराई है कि मौसमियाती बहरान इन लोगों को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है जो अब मदद के मोहताज हैं। नेपाल वज़ीर-ए-आज़म बालिंदर शाह ने जुमेरात की शब अकौमता की जनसमनी में कहा अगस्त का सानहा सिर्फ एक मकामी अलमिया नहीं था, ये दुनिया के लिए एक इंतबाह भी था। मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपने वाकई इस इंतबाह पर काम करे हैं? तकरीबन 3 साल पेशतर जब हम माउंट एवरेस्ट के पास खड़े थे तो अकौमता के सेक्रेटरी जनरल ने इंसानों के पागलपन करीब आने वाली मौसमी आफात के बारे में खबरदार किया था। शाह ने कहा बामे दुनिया से उठने वाली पुकार मतलूबा हद तक ना सुनाई गई, हम नेपाल में इस पुकार को सुन चुके हैं। हमारे तबके ने और दुनिया भर के